0: प्रोडक्ट कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: मध्य पश्चिम जान चेक। यति बेला दिउँसोको 3 बजेको छ।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रस्तुति, रेडियोलोजी।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराईदांग में भव्य प्रदर्शन भैर हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने तो मालिक, हम तो फांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है,
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?